या तो नंबर तेरा तेरे को लेसन देगा ची थोमर गांची लवा थोरंग के लंबी संज्ञा लोलो सुगनो लड़की न्यामुंडी न्यामगरो न्यूज़ मरे तना शम्नी कोबड़ी गुनो गन सांबी लड़की अर्जन तेर कब मोमी लेसन लगा सिंकिंग चे तो कुछ करेवा तारते कब जापा के तुमने जानदर टोचे साम चीज़ को कोबड़ी चोरीवा तो तना गांची कब जापी तुमने जानदर जी तुमने जिना शागां तंपु थोंकन लवा कब्जा नाम टुक लंबी कंडन लक्षणे दोनों जग कोड़ीशी दोनों दयं सोचरों चांबी लक्षित सकरा मियाना कब जिमी लीजन अरिवा शंकिंचे टोकुचो मंथते लीजन पेपर गाब्स शे